0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन

0: ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु आपणमाने कार्यक्रम शुणुछन्ति। प्रचार करुछु भक्तिगीतर कार्यक्रम बन्दना।

पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

0: ଜଣା ଅଜଣାରେ ଶୁଣିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ପରେ ଶୁଣିବେ ହସପସରା, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ସକାଳ 10:30 ଭକ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଦିନ 12:30 ଶିଳ୍ପୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁରୀ, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ବସନ୍ତ ପାତ୍ର, ଇରା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁବାସ ଦାସ। ଦିନ 1:05 ପ୍ରଚାର କରିବୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତ। ଘର ଘରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବେ ଦିନ 1:20, ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ସାକ୍ଷାତକାର, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କ'ଣ ଓ କାହିଁକି କହିବେ ନିକିତା ନାୟକ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଶୁଣିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ୍ର ଓ ସୁହାସିନୀ ମିଶ୍ର। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତକୁ ନେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ପସନ୍ଦ ଶୁଣିବେ ସକାଳ 9:00। ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:05, ଦିନ 12:00 ଓ ଦିନ 2:15। ଦିନ 11:00 ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଲାଇଭ। ସୁରଲହରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବେ ସକାଳ 8:35, ଶିଳ୍ପୀ ସନାତନ ପୁରୋହିତ ଦାସ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପଣ୍ଡା। ସକାଳ 8:45 ପ୍ରଚାର କରିବୁ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଳ୍ପୀ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ, ଇରା ମହାନ୍ତି ଓ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ। ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରଖିଛି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମୟ ସକାଳ 8:00 ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: And have a superb day. Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
4: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था

0: था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और फूड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
6: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO में यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को

0: हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
1: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमेस एंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
6: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है,

0: करीब डेढ़ दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट मेक्स आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर सब्सिडाइज्ड रिफिल्स ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स फ्रॉम 1st of next month। राष्ट्रीय संकल्प समारोह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट 1067 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री टुडे एज पार्ट ऑफ 100 वीक्स नशा मुक्त युवा अभियान। इलेक्शन कमीशन टू होल्ड स्पेशल कैंप्स इन ऑल पोलिंग स्टेशंस इन दिल्ली टुडे टू असिस्ट सिटीजंस रिगार्डिंग इंक्लूजन एंड डिलीशन ऑफ नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स। आईएमडी फोरकास्ट हैवी रेनफॉल इन कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स टुडे। And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
3: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom, or an oil marketing company mobile app. The Petroleum and Natural Gas Ministry has urged consumers who have not yet completed biometric Aadhaar authentication to do that before 1st October 2026. With Suparna Saikia, Saklayan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
2: The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1067 locations in the country. It added that this program will be organized across

0: will face Bangladesh in the semi-final. The knockout match will start at 10:30 a.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Saira. ABVP sweeps 3 of 4 DUSU seats. NSUI rebel wins VP post, writes in the Sun Times. While the Sunday Tribune headlines, ABVP sweeps DUSU poll again. Independence VP post win stuns rivals. FTA skilling incentives opening new employment avenues for youth, says Prime Minister, writes Sunday Pioneer. The Hindu also quotes the Prime Minister in its headline, developing nations wrongly blamed for emissions. The Sunday Statesman reports, Bengal bipolar drama, Mamta's Reginagar candidate does U-turn after pull-out decision. The Asian Age headlines, India rejects new US tariffs pressure. And finally, Sunday Pioneer writes, end of an era, 1965 war hero Cook passes away. The legendary Indian Air Force fighter pilot, Flight Lieutenant Alfred Cook, played a crucial role in defending Kalaikunda in the 1965 Indo-Pak War and was awarded the Veer Chakra for the classic dogfight. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100-week Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman Nicobar. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: ले कार्यक्रम रिले करी प्रचार करथलो आकाशवाणी दिल्ली रो जो मिशन शक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम
3: आमा हातरे कौशल अछि भलो उत्पाद भी अछि किंतु आमा व्यवसाय कोन दिने बड बाजार रे पहुंच परिबो
4: नमस्कार मिशन शक्ति विभाग पक्षरो उपस्थापित सशक्त महिला समृद्ध ओडिसा रो ए विशेष आलोचना को आपन मान को स्वागत करूची मु आशुतोष
3: आ मु दिबालिन आज हमें एभली एक विषय उपरे आलोचना करिबा जहां ग्रामीण महिला को उद्योग को आहुरी आगो को नबारे सहायक हेबो
4: अर्थात आचार प्रस्तुति सिलाई हस्तशिल्प खाद्य प्रक्रियाकरण भली महिला परिचालित उद्योग गुडीक पई कोनी एक बड सुजोग
3: निश्चय ओडिसा जीविका मिशन एवं आईआईटी भुवनेश्वर रो मिलित सहयोग रे परिचालित उद्यम अंकुरण कार्यक्रम माध्यम रे उद्योगी को मिलिबो आधुनिक प्रजुक्ति उन्नत पैकेजिंग ब्रांडिंग बाजार संयोग एवं विशेषज्ञ को मार्गदर्शन
4: अच्छा जति कि नुवा व्यवसाय आरंभ करबा को चाहंती से कोन ही कार्यक्रम रे आवेदन करि परिबे
3: ना एही कार्यक्रम टी सक्रिय थिबा महिला परिचालित उद्योग गुडी कर विकास पई आवेदनकारी अति कम रे 12 मास धरि सक्रिय थिबा स्वयं सहायक गोष्ठी रो सदस्य होइथिबा आवश्यक
4: तेह द्वारा केउ माने लाभान्वित होइ परिबे
3: व्यवसाय रो वार्षिक आय पई निर्धारित मानदंड पूर्ण करबाकु हेबो पंजीकृत व्यवसाय पई 20 लाख टंका गोष्ठी भित्तिक उद्योग पई 15 लाख टंका एवं व्यक्तिगत उद्योग पई 12 लाख टंका वार्षिक आय रहिबा आवश्यक
4: जदि जीएसटी एफएसएस एआई किंबा अन्यन्य पंजीकरण आवश्यक हुए सेति पई कोन सहायता रहिछि
3: एही प्रोग्राम माध्यम रे वैषयिक ओ आइनगत सहायता प्रदान करा जिवो एहा सह व्यवसाय परामर्श उत्पादर गुणवत्ता वृद्धि एवं बड बाजार सह संयोगर सुजोग मध्य मिलिवो
4: तबे उद्योग गुडीकर चयन केउ आधार रे करा जिवो
3: उद्योग गुडीकु 100 मार्क मूल्यांकन आधार रे चयन करा जिवो एतिरे सर्वनिम्न 60 मार्क रखिबा आवश्यक संपूर्ण महिला को मालिकाना किंबा परिचालन रे थिबा उद्योग को 15 मार्क रो अतिरिक्त सुविधा मध्ये मिलिबो
4: चयन परे केउ प्रकार रो सहायता मिलिबो
3: चयन करा जाय थिबा 18 जन उद्योगी को प्रतियोगिता मूलक अनुदान पांठि अधीन रे निजरा व्यवसाय योजना उपस्थापन करी 15 लाख टंका पर्यंत अनुदान पाई परिबे एहा सह व्यवसाय विस्तार पई 0% सुद्ध रे सॉफ्ट लोन सुविधा मध्ये उपलब्ध रहिछि
4: तबे आवेदन किपरि करा जिवो
3: एति पई ग्राम पंचायत स्तरीय संघ माध्यम रे किंबा सीधा सडक मध्ये आवेदन करि परिबे आवेदन रो शेष

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରଯୋଜନା ମନୀଷ କୁମାର ଠାକୁର, ଉପସ୍ଥାପନା ଦମୟନ୍ତୀ ବୈକାର।
1: गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जी हाँ, अभी यही वक्त गुजरने से पहले चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की होम इन प्लीज कार्यक्रम हेलो मो पसंद।

0: हेलो मोहबतन, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपको हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आकाशवाणी परिवार को भी।
1: जी हाँ, हमारे तरफ से भी ढेर सारी शुभ

0: शुभकामनाएं। गणेश उत्सव की
1: जी। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ दीदी।
0: सतीश रघुवंशी जी,
1: जी
0: क्या बात है, आप एकदम खुश हो?
1: बिल्कुल दीदी, आपसे तो मेरी 2 महीने बाद बात हो रही दीदी, तो आज पता हाँ। नहीं इतना खुश हूँ दीदी, क्या बताऊँ बोल के, मेरी दीदी से मेरी बात हुई, कितना हंसी हुई मेरे को बहुत ज्यादा आज।
0: मैंने सोचा आप गणेश जी का लड्डू खा लिए हैं बहुत सारे।
1: नहीं दीदी, गणेश जी का लड्डू तो डेली खा रहे हैं, मगर हाँ, क्या है आकाशवाणी में यदि दीदियों से हमारी बात हो जाती तो हमको तो लड्डू और अच्छा मीठा हो जाता है।
0: आप मोदक खाते हैं ना, लड्डू खाते हैं?
1: नहीं, अभी हमारे यहाँ गणेश जी में लड्डू दे रहे हैं प्रसाद में।
0: हाँ, बहुत अच्छा। तो आकाशवाणी जयपुर, ये ओडिशा का ये जो स्टेशन है, आप सिर्फ यही प्रोग्राम सुनते हो ना, और कुछ सुनते हो? अच्छा लगता है आपको?
1: दीदी मैं फोन कॉल में ज्यादा इंटरेस्टिंग रखता हूँ, और अब धीरे धीरे और भी कार्यक्रम सुनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को फोन कॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है दीदी।
0: बहुत अच्छा, ठीक है, फिर बोलिए आपका पसंदीदा गाना, क्या गाना सुनेंगे?
1: तो आप दीदी मुझे सुनो दीजिए, फिल्म का नाम रहेगा सनम, और आंखों के वो गीत के बोल रहेंगे दीदी, आंखों
0: आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
1: नहीं दीदी, बहुत ही अच्छा गीत है दीदी, और अच्छा, बहुत आनंद आता है,
0: उम्र भी ढल गया है ये सब करने की ना।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ठीक है,
1: और कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं?
0: हाँ जी,
1: सबसे पहले तो आपको
0: धन्यवाद,
1: और हमारे मित्र दीदी गौतम जी है, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्मराम पाटिल जी है, सारू नूर अंसारी जी है, राजन गंगवार जी हैं, टेक्सन अग्रवाल जी है, भगवान सिंह परमार जी हैं, तुकाराम जाधव जी।

0: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
1: उज्जैन का अभी क्या हाल है लोकेंद्र
0: मैडम
1: जी?
0: जी, उज्जैन में तो अभी जैसे महाकालेश्वर जी की नगरी है, और अभी इसके साथ में गणेश जी उत्सव चल रहा है,
1: जी
0: और सभी शहर में जगह जगह गणेश जी की स्थापना की गई है, वो पूजा पंडाल है गणेश जी का।
1: बहुत अच्छा लग रहा होगा ना अभी?
0: हाँ, बहुत अच्छा लगता है मैडम जी।
1: हाँ।
0: अलग अलग प्रकार के जो मतलब गणेश जी की मूर्ति है, अलग अलग जगह बिठाई गई है,
1: जी।
0: और यहाँ पर एक महाकालेश्वर मंदिर है, उनके पास में गणेश जी की जो मूर्ति है वो विशेष आकर्षित है। वो हल्दी की गांठ रहती है ना जो बड़ी वाली, उससे पूरी मूर्ति बनाई गई है।
1: तब तो बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: मतलब
1: है, पंडाल बहुत अच्छा दिख रहा होगा। लेकिन लोकेंद्र वर्मा जी,

0: एक बात याद रखिए, भगवान हमेशा इंटेंशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं देखते हैं।
1: हाँ जी जी जी मैडम बिल्कुल।
0: तो भगवान को प्यार से, भक्ति से, श्रद्धा से स्वागत कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए हम लोग ठीक से रहेंगे।
1: बिल्कुल मैडम जी, भगवान तो सभी का ध्यान रखते हैं।
0: हाँ जी,
1: और जैसे गणेश जी का खास महत्व रहता है, गणेश जी का जो पूजा अर्चना की जाती है वो सर्वप्रथम की जाती है, हमारे इष्ट देवता है सर्वप्रथम। किसी भी शादी समारोह में या किसी मकान के उद्घाटन में या कोई सा भी विशेष कोई पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है।
0: चलिए पप्पा सभी का भला करें, सब लोग अच्छे से रहें, कोई बाधा विघ्न उनके ऊपर ना आए, यही उम्मीद करते हैं। बोल दीजिए आपका पसंदीदा गाना।
1: गाना
0: क्या
1: है
0: गाना
1: मैडम जी,
0: सुनेंगे?
1: जैसे अब तो ये गणेश जी के 4-5 दिन पूजन के हो गए हैं, तो गणेश जी का जब हम 10 दिन हमारे घर में विराजित रखते हैं
0: जी
1: और 11 जब आती है, 11वें दिन जब हम इनको विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है। ऐसा लगता है कि हमारे घर में गणेश जी इतने दिन तक रहे। तो फिर एक गाना भी इसमें आ रहा है मुझे, फिल्म का नाम है दर्द का रिश्ता।
0: दर्द का रिश्ता।
1: दर्द का रिश्ता इसमें गाना है, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे।
0: चलिए सुनते हैं।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो मोपसंद
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्ते।
1: मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से।
0: दशरथ जी हो आप?
1: जी हाँ।
0: जय श्री राम।
1: जय श्री राम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: यही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नटाराम से।
0: नटाराम?
1: जी हाँ।
0: कितना बड़ा गांव होगा
1: ये? 2500 के लगभग जनसंख्या है यहाँ पर, यानी छोटी बोली करे तो 4-5 हजार के लगभग है, लेकिन बड़े बड़े जो अपन वोट डालने वाले की गिने पे 2500 के लगभग है।
0: बहुत बड़ा गांव होगा ना?
1: जी बड़ा गांव।
0: हाँ, क्या क्या है आपका गांव में?
1: हाँ, घूमने के लिए तो यहाँ से नटाराम से 3 किलोमीटर दूरी पर भोलेनाथ जी का स्थान है, जिनका नाम है कोटेश्वर महादेव जी।
0: कोटेश्वर महादेव जी, क्या बात है।
1: जी, बहुत अच्छा पहाड़ियों पर बसा हुआ है।
0: दशरथ जी, आप क्या करते हो? आपका रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, क्या काम करते हैं?
1: रोजी रोटी के लिए यही है, हेयर सैलून चलाते हैं।
0: एक बार बातचीत हो चुका है आपसे?
1: पहले हुई थी ना, अपने 6 महीने पहले हुई थी बात।
0: हाँ, 6 महीने हो गया, क्या कर रहे थे, याद नहीं आ रहा था?
1: याद आ रहा था, लेकिन समय में गैप देना जरूरी होता है, उसमें बीच में जो बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, जो काफी कोशिश करते हैं, फोन लगता नहीं है।
0: जी जी,
1: उनको मौका मिलना चाहिए।
0: अभी सैलून में है आप?
1: बिल्कुल सैलून में हूँ मैं इस वक्त, मैं एक कस्टमर के दाढ़ी भी बना रहा हूँ।
0: अरे वाह, देखिए लग लुक जाएगा। बोलिए आपका पसंदीदा गाना।
1: मैं कुमार सानू साहब और साधना सरगम ने गाना गाया था, ये लम्हे जुदाई थे, 2004 में बनी थी ये फिल्म, मेरा नाम लेने की चाहत हुई है।
0: कौन सा पिक्चर?
1: ये लम्हे जुदाई के। मेरा नाम लेने की चाहत हुई है।
0: जी धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर विशाखा का बहुत बहुत धन्यवाद जी।

0: रोशन देवांगन बोल रहा हूँ, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से।
1: कैसे हैं रोशन जी?
0: बस बढ़िया है मैम।
1: बिलाईगढ़ में क्या अभी धूप है ना, बारिश है?
0: अभी धूप निकला है मैम, थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, 4-5 दिन हो गया।
1: अच्छा,
0: और उमस भरा गर्मी चल रहा है अभी।
1: कोई दिक्कत नहीं बारिश नहीं होने से?
0: जी जी जी अब दिक्कत तो अब किसानों के लिए दिक्कत है।
1: हाँ, अगर किसान दिक्कत में आ जाता है, हम लोग भी दिक्कत में आ जाएंगे।
0: जी जी
1: हाँ
0: जी जी जी जी
1: और क्या क्या सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर ओडिशा का स्टेशन से?
0: जी जी फोनिंग कार्यक्रम में फोन लगाकर फोनिंग कार्यक्रम सुनता हूँ। ऐसे दिन भर में तो मैं कम से कम 20 स्टेशनों से जुड़ता हूँ सुनने के लिए।
1: 20 स्टेशन
0: जहाँ? हाँ, दिन भर में।
1: अच्छा, वक्त कहाँ से मिलता है आपको?
0: मैं एक कपड़ा बनाता हूँ, साड़ियाँ बनाता हूँ, आप लोगों के लिए संबलपुरी साड़ी चलता है वही साड़ी।
1: अच्छा,
0: बनाता हूँ।
1: रेडियो सुन सुन के आप बनाते हैं?
0: करते करते सुनता रहता हूँ मैम दिन भर।
1: जी जी बहुत अच्छा, अभी संबलपुरी साड़ी ट्रेंड में है।
0: जी जी जी
1: तो आपका बिजनेस बेहतर चल रहा होगा ना?
0: जी जी जी हम लोग क्या है ना, व्यापारियों के लिए काम करते हैं और वो लोग जाकर आपके यहाँ ही सेल करते हैं। बड़गड़ में मार्केट लगता है बुधवार को, बड़गड़ में सुबह।
1: जी,
0: तो व्यापारी लोग जाकर वहीं पर खपत करते हैं सब।
1: अच्छा, ओडिया भाषा आपका समझ में आ जाता है? आप उड़ीसा से बिजनेस करते हैं?
0: हम लोग नहीं जाते हैं मैम, वो व्यापारी लोग जाते हैं।
1: तो रोशन जी बोलिए, कौन सा गाना सुनेंगे आप आज?
0: आज है किशोर कुमार की आवाज में है फिल्म है देवता,
1: देवता।
0: और हाँ गीत का बोल है चांद चुरा के लाया हूँ।
1: ठीक है,
0: जी
1: चलिए सुनाते हैं हम आपका पसंदीदा गाना।
0: जी मैम, धन्यवाद मैम।

0: मो पसंद आकाशवाणी जयपुर।
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार।
1: मैडम नुआखाई
0: नुआखाई जोहार।
1: मैडम
0: बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको।
1: शशिभूषण कुमार मैडम रोहनमाल पटनागर ब्लॉक बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रु।
0: अच्छा अच्छा, बहुत खिया पिया हेछि बोली कि नुआखाई?
1: हां मैडम, आम पश्चिम ओडिसा तो नुआखाई तो बड़ पर्व पालन करू आमे,
0: सेरा आमे जानिछु। खाइबा पीबा जबरदस्त हेछि बोधे, से कथा पचार?
1: हां मैडम, खाइबा पीबा तो मजा खुशी होय
0: बस।
1: आउ आमर से नुआ धान को आमे खाऊ ताकू, देवा देवी की पूजा कर सला पे।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, नमस्ते। हेलो, मो पसंद आकाशवाणी जयपुर उड़ीसा।
0: मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
1: जम्मू कश्मीर से कौन बात कर रहे हैं, ठीक से बोलिए।
0: पुष्करनाथ शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर।
1: पुष्करनाथ शर्मा जी हो आप?
0: जी जी।
1: हाँ, जम्मू कश्मीर का अभी क्या हाल है, कैसा मौसम है उधर?
0: बहुत अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है दीदी, और घास कटाई का और मक्खियों की कटाई चल रही है।
1: वो जो सेब का फसल हो गया?
0: सेब का फसल इस साल बनी नहीं है, ओले पड़े थे तो कम बना है, वैसे बना नहीं इस साल।
1: अच्छा, वो दिक्कत हो गया है
0: जी।
1: और क्या बोलना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में पुष्करनाथ जी?
0: प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, भगवान आपको और आकाशवाणी परिवार को खुश रखें, ढेर सारी खुशियां मिले। गणेश चल रहा है तो भगवान आप सबको खुश रखें
1: जी। बोलिए, कौन सा गाना सुनेंगे, पसंदीदा गाना बोलिए।
0: जी जी, मोहम्मद रफी साथियों की आवाज में है, गणेश जी का भजन सुनूंगा, देवा देवा गणपति देवा।
1: बहुत बढ़िया, चलिए सुनते हैं आपका पसंदीदा गाना पुष्कर।

0: आकाशवाणी जयपुर उड़ीसा में ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसोलिया।
1: सत्येंद्र कुमार चंदसोलिया जी कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और तब बढ़िया और भी हो जाऊंगा जब हमारा आकाशवाणी जयपुर उड़ीसा वाला परिवार भी बिल्कुल मस्त मदमस्त हो।
1: जी हाँ हम लोग बिल्कुल मस्त और मदमस्त स्वस्थ हैं।
0: यही होना चाहिए।
1: आपका जो जहाँ रहते हैं आपका गांव
0: ग्राम पजोनिया,
1: पजोनिया का क्या हाल है, क्या मौसम है पजोनिया में?
0: मौसम बिल्कुल साफ है, बदली तो है लेकिन खुला हुआ है। और कहना चाहिए कि जो कुंवार वाला धमका जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं गर्मी को,
1: जी
0: तो वो पोजीशन बिल्कुल बन गई है। अगर धूप खिली है तो गर्मी बढ़ गई।
1: अभी भादो चल रहा है, भादो का महीना?
0: अभी भादों का चल रहा है लेकिन भादों से एक हफ्ता मान लीजिए और रह गया, बस इसके बाद फिर कुंवार ही
1: अच्छा।
0: आने वाला है।
1: ऐसा होता है क्या?
0: नहीं मतलब आज बेशक नहीं कह सकते कि कुंवार है, लेकिन यह है कि हाँ कुंवार दस्तक तो दे ही रहा है।
1: जी
0: प्रकृति जो भी काम करती है वो कहना चाहिए हम और आपके लिए ही करती है, यानी पृथ्वी पे जो जीवन है उसके लिए ही करती है। लेकिन पृथ्वी का जीवन प्रकृति के विपरीत चलता है, उसका दुरुपयोग करता है। वो दुरुपयोग के कई कारण है, कई प्रकार से करता है, चाहे वो पानी का दोहन हो, चाहे बिजली का अनावश्यक खर्च करना हो, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण के मामले से संबंधित हो, किसी में भी हो, उसका दुरुपयोग करते हैं हम और आप, उसका नतीजा भोग रहे हैं। वो अभी अभी ताजा नतीजा भुगता है नेपाल आपदा।
1: बोलिए आपका पसंदीदा गाना, क्या गाना सुनेंगे?
0: आज हमने दो रास्ते फिल्म का चुन रखा है।
1: कौन सा गाना?
0: दो रास्ते के तो सभी गीत अच्छे हैं।
1: हाँ, उसमें से
0: एक

0: नमस्कार मैडम,
1: इंद्रभान
0: सिंह जी।
1: इंद्रभान सिंह जी, कैसे हो?
0: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ।
1: नहीं लगता है आप ठीक हो, आप थोड़ा सीरियसली बात कर रहे हैं, क्या बात है?
0: नहीं मैडम, क्या थोड़ा कि वो पानी खुला नहीं ना, थोड़ा ड्यूटी घर में पाया और घर पे हूँ।
1: हाँ,
0: हाँ। और जुड़ा हूँ।
1: अच्छा, हाँ बोलिए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है घर घर की कहानी और समा है सुहाना सुहाना।
1: समा है सुहाना सुहाना,
0: ये गीत सुने?
1: अच्छा ठीक है, चलिए गाना सुनते हैं, धन्यवाद कल करने के लिए।
2: समा

0: दीदी को मेरा जय श्री महाकाल प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार
0: दीदी, शिवा लोहा टेम्पी विदिशा से आपका निमित श्रोता बात कर रहा हूँ।
1: शिवा जी, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ दीदी, आपकी मधुर मधुर आवाज सुन के और भी अच्छा लग रहा है।
1: ऐसा क्या
0: जी दीदी?
1: हाँ, अभी कहाँ पे है? काम के जगह में है ना, घर में है?
0: दीदी थोड़ा घर पे आया था, मैंने कहा से बात कर लूँ।
1: जी जी, बहुत अच्छा किया। बोलिए, कौन सा गाना सुनेंगे अभी?
0: गणपति बाप्पा की कैसी कृपा चल रही है दीदी आपसे?
1: हाँ,
0: गणेश जी की कैसी कृपा चल रही है आपसे?
1: सच में
0: जी,
1: कैसे पता लगा आपको?
0: दीदी मुझे ऐसा क्या है, मैं बात करता हूँ तो मुझे अटैचमेंट हो जाती है।
1: सिर्फ गणेश जी का कृपा मेरे ऊपर ना बरसे, सभी का ऊपर बरसे, सब लोग खुश में रहे।
0: बिल्कुल, हमारा पूरा भारत से कृपा बरसे।
1: हाँ,
0: हमारा भारत खुश रहे, खुशहाल रहे
1: जी,
0: और हरा भरा रहे।

0: क्या बात है, बोल दीजिए अभी आपका पसंदीदा गाना।
1: दीदी मूवी का नाम है मिलेंगे मिलेंगे, और इसमें गाना रहेगा ये हरे कांच की चूड़ियां पहनी तेरे नाम की राधा हो गई श्याम। दीदी और सभी सुनने वालों को और आपको राधा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: राधे राधे, धन्यवाद।
1: राधे राधे।

0: हेलो जयपुर ओडिशा, ओडिशा जयपुर,
1: ओडिशा आकाशवाणी जयपुर।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, बोलिए, नाम बोल दीजिए।
0: सीतारामपुर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र। कैसे मैम आप?
1: मैं एकदम अच्छी हूँ, आपके बारे में बोलिए।
0: हाँ, हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार चल रहा है मैम, गणपति का उत्सव।
1: हाँ,
0: तो मुझे गाना देना है।
1: हमसे
0: बढ़कर कौन फिल्म का नाम होगा?
1: हमसे बढ़कर कौन? देवा हो देवा, गणपति देवा। अच्छा, लगता है आपका गांव में एकदम धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है।
0: जी मैम, कीर्तन भजन और भोजन भी होता है मैम।
1: आपका खेती बाड़ी का क्या हाल है अभी?
0: हमारे खेती बाड़ी का है, तो वो कोई बुरे हाल है मैम, साथ नहीं चलती मैम ये शांति।
1: अच्छा ठीक है, फिर चलिए हम और आप सुनते हैं ये सुंदर सा भजन, देवा हो देवा, गणपति देवा।
0: देवा। हाँ।

0: हेलो।
1: रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है और सितारों की जरूरत आसमान को होती है। आप हमें भूल ना जाना, एक अच्छे अर्जे की जरूरत हर इंसान को होती है। गरीब खान को उठे कौशल जबरारी
0: आज्ञा। बहुत दिनों पर आप फोन कले गरीब खान सर।
1: आज्ञा आज्ञा
0: हाँ
1: धन्यवाद।
0: अच्छा आप

0: हेलो मोर पसंद।
1: हाँ जी बोलिए।
0: हाँ नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार।
0: कल्याण सेन बोल रहा हूँ, नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
1: अच्छा, बहुत दिनों के बाद आप फोन किए कल्याण सेन जी।
0: जी जी जी।
1: क्या कर रहे थे, भूल गए थे क्या ओडिशा का स्टेशन को?
0: नहीं दीदी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं। वैसे याद तो रहता था, लेकिन थोड़ा व्यस्तता की वजह से कॉल नहीं कर पा रहा है इसे। और कैसे हैं दीदी आप?
1: हम अच्छे हैं। आपका काम धंधा कैसे चल रहा है?
0: बस सब बढ़िया चल रहा है दीदी। मौसम भी अभी सुबह शाम, मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत बन जाता है, बारिश हो जाता है हल्का फुल्का, और दोपहर में गर्मी का एहसास होता रहता है।
1: मौसम है, मौसम का काम है बदलना।
0: मौसम बदलते रहते हैं
1: यार, बदलना जाना मौसम की तरह,
0: ऐसा गाना है ना? तो फिर कभी नहीं बदल सकते।
1: तो ठीक है, फिर बोलिए आपका पसंदी का गाना, कौन सा गाना सुनेंगे
0: आप? सुनाइएगा, फिल्म का नाम है संगम, उसका फिल्म है मुकेश जी और लता जी की आवाज में गीत है, वो मेरे सनम वो मेरे सनम।
1: लगता है आपका फेवरेट गाना है
0: ये। तो मेरा फेवरेट ही है, और हमेशा जब भी कॉल लगता है तो मैं इसी को सुनना पसंद करता हूँ।
1: बहुत बार सुन चुके हैं ये गाना।
0: तो सुनते रहते हैं दीदी।
1: बहुत अच्छा
0: अच्छा लगता है। कुछ गाने ऐसे हैं कि जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं।
1: अच्छा, तो ये गाना आपका दिलों में बस गया है? बहुत अच्छा,
0: बिल्कुल बसा हुआ है।
1: बहुत अच्छा, तो चलिए सुनते हैं कल्याण सेन जी गाना, सुनते हैं
0: सभी दोस्तों के लिए दीदी।
1: हाँ एठि सरी आसीछे आजिर हेलो मो पसंद कार्यक्रम। तेबे जीवा पूर्वरु पुणि थरे कहि रखुछु आमर फोन नंबर 06854230690। ए नंबर टी खोला रहे प्रति शनिवार सकाळ 10:30 रे। आ कार्यक्रम हेलो मो पसंद प्रचारित हुए प्रति रविवार सकाळ 9:00 रु 10:00 जाय। आज समय अलाणी रहुछु, नमस्कार।

0: बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई थी और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थी। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज भारत की टैगबॉल खिलाड़ी क्विम्सी डिसूजा

0: कांस्य पदक के लिए जापान की वीना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनिले हिंदी रे संवाद रिले करि प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रु। श्रोता बंधु आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रु। प्रचार करुछु हिंदी चलचित्ररु किछि गीत। फन्ना चलचित्ररु नेछु कार्यक्रमर प्रथम गीतटि। शिल्पी महालक्ष्मी आयर, गीतिकार प्रसून जोशी, संगीत जतिन ललित।

सूरज को स्नान कराना है, धरती को भी नहलाना है। जो मन से निकले उमड़ घुमड़, उस नदी को आँच बहाना है। स्वच्छता की जो

0: ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶୁଣିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्यप्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देशभर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह की नशा

0: मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हेरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है, जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर ढाका पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा पुलिस की गश्त और तेज कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की इलावेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार करलु आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी जयपुर कार्यक्रम आम केन्द्र रु प्रचारित होउछि मीडियम वेबरे 204.5 मीटर तथा 1467 किलो हजुके एफएमरे 103.6 मेगा हजुके एवं प्रसार भारतीर लाइव स्ट्रीमिंग आप माध्यमरे मध्ये प्रचार करुछु केतोटी हिंदी चलचित्ररु भक्ति गीत। प्रथम गीतटी शुणन्तु दो आंखी बाराहत चलचित्ररु कंठशिल्पी लता मंगेशकर गीत रचना करिछन्ति पंडित भरत व्यास संगीत परिचालना करिछन्ति बसंत देसाई।

आशा भोसले की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से शकील बदायनी ने इसे लिखा और हेमंत कुमार का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एसडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: यह विविध भारती लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में मनचाहे गीत, जिसका नाम है आपके प्यार भरे फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को एकदम तैयार है। आज का ये गीतों का सफर आप तय करेंगे अनुराधा उपाध्याय के संग। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।

जानी दुश्मन इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार भारती पारस पायल श्वेता और उर्वी बैन ने, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव अनीता जाधव प्रसाद जाधव बेबी सोनल ने, ग्राम खकड़ तहसील कोंच जालो उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुजर सत्यम सिंह अंशराज एवं उनका समस्त परिवार, संबलपुर कांकेर से ज्योति ओजस्वी इशिका फागुराम यादव ने, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत कीसू तासु अर्णव आनंद सत्यम ने इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी, और साथ ही आनंद

सुनना मगर ये किसी से न कहना, जिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

मन्नाडी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद

हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने ग्राम छह गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलन ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओझा, प्रतीक ने इसी गीत की और साथ ही दीप्ति, उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखेड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मूलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यही संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी।

0: चाहेगी। यह है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
2: अवंतिके, ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
3: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए, मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
3: हाँ चेटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंतिके?
2: बहुत ही सुंदर है।
3: और तोड़ो?
2: नहीं नहीं, और न तोड़ो,
3: क्यों रोकती है?
2: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे, तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
3: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
2: नहीं जानती अवंतिके, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूं। बस मुझे एक संदेह है।
3: क्या?
2: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंतिके, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
3: उससे भी बढ़कर।
2: तुमने कैसे जाना?
3: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासुदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
2: हाँ संभव है।
4: राजकुमारी, आप महाराज उदय से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
2: मैंने कहा था जेटी।
3: फिर क्या कहा उन्होंने?
2: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
3: ओह,
2: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।

0: गिरे हुए बंधु जीव कुसुम और अविरल पवन से ये प्रमद वन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं उधर चले श्रीमान वत्सराज।
1: मैं आ गया मित्र वसंतक।
2: मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
0: देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
3: देखिए राजकुमारी पद्मावती, यूं सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
4: हाँ हाँ वही तो है चेटी। अवंती की तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
3: हाँ यही करें राजकुमारी।
0: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
1: कैसे जाना वसंतक?
0: इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके कि फूल तोड़ लिए गए।
1: वसंतक इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
0: बहुत अच्छा प्रभु बहुत अच्छा, पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
1: अच्छा चलो।
3: अरे ये वसंतक मूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ ऐसा ही करो।
0: अरे बचाओ बचाओ इन मधुकरों से, इन भ्रमों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
1: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
0: जी
3: राजकुमारी पद्मावती हम तो यहाँ बंदी हो गए।
4: लेकिन प्रसन्नता है सामने ही आर्यपुत्र बैठे हैं।
5: आर्यपुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
3: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
5: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े इससे आंखों में आंसू आ गए।
0: स्वामी वत्सराज उदयन ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
1: पूछो वसंतक।
0: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
1: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
0: मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
1: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
0: मेरे लिए तो दोनों समान है प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय क्रोध अहंकार रहित मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं आर्य वसंतक कहाँ गए, आर्य वसंतक

0: नहीं।
1: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासव दत्ता से कह दूंगा।
2: अब देवी वासव दत्ता कहां है?
0: वे तो कभी की परलोक सिधार।
3: हां मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते। वासव दत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता। उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
0: अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया। चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
4: अवंती की, आरी का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहां से निकल चले।
5: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यह छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरें, मैं ही यहां से चली जाती हूं।
4: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हमारे के पास चले। सचमुच जाऊं?
5: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो।
4: आरी की जय हो।
1: पद्मावती बैठो। जल आए वसंत
3: जी।
1: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
4: अथवा किसी दुख से?
1: नहीं पद्मावती, नहीं।
6: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृदजनों को दर्शन दें।
1: ठीक कहा वसंतक, आओ चलें।
7: मधुरी के, ओ मधुरी के, जल्दी इधर आ।
4: आई। मधुरी का, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
8: राजकुमारी कहाँ है?
4: उद्यान वाले समुद्र गृह में।
7: मैं आर्य वसंता को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ही संदेश दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजन शीघ्रता करें, राजकुमारी पद्मावती सिर्फ विवाह से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र गृह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र गृह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां सैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
1: तो देव उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें?
2: हां यही ठीक है। मित्र वसंतक
1: जी,
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव शैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हां तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है, लेकिन इसके साथ

0: मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासुदत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासुदत्ता, वासुदत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
0: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था। नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था, नगर कांपिल्य। राजा ब्रह्मदत्त था, नगर कांपिल्य। कांपिल्य राजा था, नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे, देव को तो नींद आ गई। चलो, अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है। चलो, कुछ ओढ़ने को भी ले आऊं, वरना अपने राम पिर बोल जाएंगे।
2: भाग्य कितना निठुर है। ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती, अस्वस्थ हो गई। अरे, यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं। पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है। चलो, उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है। लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासुदत्ता,
2: ये तो आर्यपुत्र है। यहाँ कैसे?
0: प्रिय,
2: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य, योगेंद्रायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
0: अवंती राजपुत्री,
2: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं। एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
0: प्रिय आशीष,
2: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
0: क्या तुम कुपित हो?
2: नहीं, दुखी हूँ।
0: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
2: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता।
0: वासुदत्ता, वासुदत्ता, प्रिय, प्रिय।
2: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहां देर से बैठी हूं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा।
0: प्रिय,
2: चलो, चलने से पहले सोए आर्यपुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दूं। अब चलो।
0: ठहरो, ठहरो, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो। अरे, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
1: राजन, जाग गए आप?
0: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
1: क्या?
0: वासुदत्ता जीवित है।
1: हाँ, वासुदत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गई।
0: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
1: समझा समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासुदत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
0: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता। यदि ये भ्रम है तो वो सदा बना रहे।

0: समझा राजन समझा। इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
1: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा। मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो। स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां अब भी रोमांच है।
0: राजन व्यर्थ चिंतन छोड़ें, आइए चतुःशाला चलें।
2: चलिए राजन चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी,
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणी पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुम्णवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणी को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से रभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कुल वीणा बजा रहा था,

0: वासवती, घोषवती का स्वर, ये तो वासवदत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ भाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती, घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासवदत्ता, वासवदत्ता, वो कहाँ है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: विजया, जा निवेदन कर, ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य।
3: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ गोत्र कंचुकी और महारानी वासवदत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
4: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
3: जो आज्ञा प्रभु।
5: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
4: हाँ, वासवदत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
5: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
4: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
3: कंचुकी और धाये द्वार पर खड़े हैं महाराज,
4: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
6: आर्य पुत्र की जय हो।
5: आर्य पुत्र की जय हो।
4: आर्य वैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
7: सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं।
4: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
7: महाराज उदयन, शत्रु द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
4: आर्य वैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ, बंदी बना, तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासवदत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी

0: क्या नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो है?
1: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
0: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासव दत्ता बस वो ही नहीं है।
1: राजन संताप न करें।
2: स्वामी धैर्य धरे, महासैन कन्या वासव दत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
0: वासव दत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
1: राजन राज महिषी अंगारवती में कहा है वासव दत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं। पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष आपको वासव दत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासव दत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासव दत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्रफलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
0: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका यह कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
3: आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
4: ये देखिए पद्मावती जी।
3: अरे
0: देवी, क्या बात है?
3: आर्यपुत्र, आश्चर्य, देवी वासव दत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
0: यहाँ?
3: हाँ आर्यपुत्र।
0: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
3: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
0: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है, यूं तो रूप साम्य मिल ही जाता है।
5: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
0: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
3: संभव है वही हो।
0: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
5: जो आज्ञा प्रभु।
0: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
3: जी।
6: जय हो, आपकी जय हो।
0: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
6: हाँ राजन।
0: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
5: आर्यपुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
0: धरोहर लौटा दो पद्मावती, वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
4: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासव दत्ता है।
0: मेरे प्रिया वासव दत्ता, सच? अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासव दत्ता को ले अंतरपुर में प्रवेश करें।
6: नहीं देव, उसे अंतरपुर प्रवेश नहीं करा, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्रो राजधर्म के आचार्य है, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
0: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
6: स्वामी की जय।
0: महामात्य।
3: आर्यपुत्र की जय।
0: वासव दत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंध रायन ही है, और ये महासेन पुत्री वासव दत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
7: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
0: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम दूतों की रक्षा हुई है।
3: तो ये अवंतिका ही आर्या वासव दत्ता है।
8: आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
9: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
0: मित्र यौगंधरायन, बताओ देवी वासव दत्ता को
10: यूं हटा देने में

0: तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
1: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
0: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
1: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासुदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
0: क्या मंत्री रुमणवान भी इसे जानता था?
1: हाँ राजन, सभी जानते थे।
0: ओ
1: महाराज उदयन रे।

0: पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे और हमारे साथ वासव दत्ता भी होंगी।
1: हाँ स्वामी, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है
2: और मेरा

ये था नाटक स्वप्नवासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
5: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
5: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो, यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है। तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
5: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
5: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
5: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा
5: बहुत खूबसूरत हवेली थी।

0: आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे, बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी माताजी हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
1: ये जो निकलने का सिलसिला है इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
0: हाँ,
1: और दौलत को ठुकराया।
0: हाँ, दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो, और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए, क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
1: अच्छा, ये लखनऊ की बात
0: है। ये लखनऊ की बात है, और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब।
1: जी,
0: आपने नाम शायद सुना होगा।
1: जी,
0: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज मुझमें भी आई, और मुझमें डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की मैं वो गाता था
1: बाबा।
0: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे।
1: जी,
0: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरी को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी, बच्चे को कहां पता चलता। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
1: एक झटके में हवेली से बाहर,
0: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद 1.5-2 महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पे मकान लिया, मुझे याद नहीं, बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया,
0: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया।
1: जी जी,
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया।
1: जी,
0: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा।
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम वो कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे। और इस कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान,
0: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल।
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था,
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे
0: थे। संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे, डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे, और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
1: जी।
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
1: वाह, क्या बात है,
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता, मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, ये मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
1: वो तो मैंने देखा है,
0: लेकिन हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा, हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर। तो जी, वहां से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते, गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में बॉम्बे पहुंचे।

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ? रायपुर, फिर अहमदाबाद,
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे उन्होंने बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा, और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बम्बई छोड़ के चले गए,
1: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहां चले गए, वहां देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही हो?
1: 12
0: 12 वर्ष। अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं,
0: पहले नाम
1: डैडी के, हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी ये लोग पास करते थे, तो वो ज्ञानी जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा,
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
0: अच्छा,
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ,
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे पार्टी
0: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
0: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप?
1: जी, डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
0: जी,
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
0: जी।
1: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा हूँ।
0: क्या बात है।
1: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है
0: जी,
1: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया, वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊंगा,
0: वो कहानी में आगे आएगा,
1: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुए।
0: बाप रे, 10-12 घर
1: 2 साल में
0: जी,
1: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंदर गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, मटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही
0: जी,
1: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
0: बाप रे बाप,
1: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे,
0: 13.5 घंटे
1: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
0: ओहो,
1: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का

0: ब्रेक 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
1: अरे बाप रे,
0: 4:30-5 बजे।
1: कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेले, बच्चों के साथ खेले?
0: कभी हुआ ही नहीं, यही जिंदगी थी। डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
1: बस उसके आगे
0: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
1: जी,
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है।
1: कितनी सुंदर बात है।
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।

0: दो साल निकल गए बम्बई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन, हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा,
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद सफी चाचा है जो बड़े डायरेक्टर है, नौशाद साहब के असिस्टेंट है
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी, बिल्कुल
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था
1: जी। जी
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए,
1: हाँ
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल,
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं, वो भी मोहम्मद शफी के साथ,
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है बड़ा रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा,
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूजडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
1: जी।
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब, जाके हम लोग हॉल में बैठ गए, अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर आजा। उनका नाम पीटर था, बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
0: बहुत बड़ी हस्ती
1: जी।
0: तो उन्होंने आया, पीटर आजा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गए या 9 हो गए, 8 हो गए, जो भी था याद नहीं। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटेशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ, तुम बजाओ। और मैं नहीं बजा सका उससे,
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे, मैं मुझे हुआ क्या। शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज

0: यहाँ पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना। तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए।
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी,
0: 10 रुपए पूरे दिन के। तो सबको 10-10 रुपए दिए, तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए। और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए तो मुझे बोला, ये 5 रुपए जो दे रहा हो ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे।
1: ओ,
0: शर्ट फटी होगी
1: जी, जी
0: ध्यान नहीं है
1: जी जी।
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात।
1: इतनी बड़ी रकम
0: कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं बोला, डैडी ऐसे ऐसा उन्होंने बोला है। तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, गायूर जी को माथा टेका के आज बच्चे की पहली कमाई आई है।
1: 12 बरस की उम्र में?
0: नहीं, 14 बरस हो गया।
1: अच्छा,
0: 62
1: जी जी,
0: 14 बरस
1: जी।
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे बोले, चलो उठो, चलो चलते हैं। कहाँ? चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए। दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी।
1: गजब।
0: 2 मेरे लिए, 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना। तो डैडी को लेके गया, बोले इसको लड़के को आप बाबा जी के रामप्रसाद जी के डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे।
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे। इतने जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस किया और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है हमने
1: जी। कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे।
0: बाबा जी बोलते ना। तो अदरवाइज पुराने जमाने में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी।
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ।
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं।
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे।
0: लाडला बच्चा भी कहते थे और मुझे राम सिंह कहते थे।
1: अच्छा।
0: मुझे कहते ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था।
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटरी में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशन
0: लिख रहे हैं।
1: गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा, वो उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: थी। जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना, जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह।
0: तो सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो, बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणि।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: 63 में आ गई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे भी वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूं।
1: अरे वाह वाह।
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया नहीं जाता। आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
1: अरे बाप रे। और आपकी इतनी कम उम्र,
0: ये शायद 63-64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
1: जी जी, शेख मुख्तार,
0: उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह।
0: 6 फुट के थे,
1: हट्टे कट्टे,
0: उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड मुझे चाचा कर रहे थे। वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिख रहे। हमने उस 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है।
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है।

0: बाप
1: 15-16 साल की उम्र।
0: कमाल।
1: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा नौशाद साहब का
0: जी,
1: तो हम सब बजा रहे थे। मैं सर थर्ड रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था, तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
0: वाह वाह,
1: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
0: कौन सी फिल्म है
1: वो मुझे याद है। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म नहीं हुआ करती थी।
0: जी जी जी,
1: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग
0: अच्छा।
1: पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
0: हाँ, वो ऐसा नहीं होता
1: ऐसा नहीं होता था।
0: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया?
1: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
0: वाह वाह।
1: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया।
0: हाँ।
1: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम।
0: क्या बात है।
1: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब उसमें थे।
0: वाह।
1: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
0: गजब गजब, क्या बात है।
1: आज तक बजी है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तो ने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
0: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं। ओहो,
1: ये 64 की बात
0: है। जी, अब
1: फील ही फील है।
0: ये कहां से आया?
1: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
0: हाँ हाँ,
1: पहला सोलो था
0: जी,
1: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
0: जी,
1: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
0: एक वायलिनिस्ट
1: संबडीज
0: एंट्री हो गई।
1: संबडीज
0: जी, बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में, तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
1: 1960 में फिल्म आई थी मुगल-ए-आज़म, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा काम।
0: जी,
1: हम लोग सब यही होते थे यार, ऐसा काम कैसे हो सकता है।
0: करिश्माई काम है,
1: करिश्माई का। और वो गाना देखिए, 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
0: हाँ।
1: जब प्यार किया तो डरना क्या।
0: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
1: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है।
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूं अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूं और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो बातें भी जो भी बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: भव्यता चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे? तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकाल दूं, तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड। साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था, वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय, तनय गजर जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए,
0: जी,
1: उसके बाद में क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा। पूरा जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
0: जी।
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, वो भी गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है, ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ।
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है, पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा,
1: बैकग्राउंड का पूरा स्कोर लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए,
0: और गानों के नोटेशंस करने
1: वो
0: में
1: भी, वो भी, हाँ, वो
0: अलग
1: भी
0: अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए, तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
1: पार्ट बाय पार्ट।
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे,
0: जी यहाँ तो
1: अभी ट्रैक थे, और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 व्योला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
0: बाप रे बाप रे,
1: ये हमने मद्रास से

0: क्वेश्चन आए, यहां रहे 7 दिन, सात दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
1: गजब,
0: खाली वायलेंस के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया, ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
1: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
0: आराम से,
1: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए
0: पूरे,
1: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई,
0: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही, आपको आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
1: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
0: जी, जी।
1: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस है, बहुत लंबे, बहुत लंबा पीस है,
0: बहुत लंबा,
1: 2.5-3 मिनट
0: सारे किए हुए,
1: जी,
0: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का,
1: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा दिया,
0: उसी के ऊपर बजा हुआ है। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है, जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
1: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
0: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपया खर्चा हुआ,
1: जी,
0: उस टाइम पे, मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो,
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया, अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा, अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है,
1: जी जी,
0: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपया पूरा म्यूजिक के ऊपर, और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है, सो।
1: जी,
0: मतलब उस टाइम में भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने,
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
0: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस, और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
1: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए,
0: बिल्कुल हो जाए, वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
1: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद,
0: क्योंकि क्या है उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज किया,
1: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया,
0: ये सुनाइए,
1: सुनते हैं।

0: देखिए बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी।
0: कि ये संगीत आप
2: यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी
2: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी
2: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है वायलिंस की डबिंग है वो सब लिखना वो सब उसने किया हुआ है। बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई।
0: जी जी जी क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
2: देखिए जी नौशाद साहब के आते उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि
0: हाँ।
2: तो मोहम्मद शफी साहब थे
0: जी,
2: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया
2: जी, क्योंकि शफी साहब काम करते थे हम लोग बजाते थे
0: जी।
2: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया
0: जी,
2: चाय पीने चाय पीते हैं चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है
0: आशियाना
2: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए रूम में बैठ गए। नौशाद साहब ऊपर से आए बोले आओ सभी मियाँ किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है। देखा तो हुआ इसको अपनी रिकॉर्डिंग में जाता है ना वायलिन में जाता है। हाँ जी वायलिन में जाता है तो क्यों लाए उसको यहाँ पे। लेकिन मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब।
2: क्योंकि मैं अब मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर। बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही।
2: शाह साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी वो हम बैठते थे एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी
2: जैसे आप बैठे ऐसे मैं बैठा हूँ तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह।
2: आज भी वो कुर्सी और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
2: बड़े बड़े सिंगर बैठे
0: जी,
2: गुलाम अली साहब से ले आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के रफी साहब लता जी आशा जी सब उस कुर्सी बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे जी। आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
0: जी जी।
2: तहजीब और इज्जत
0: जी
2: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है।
2: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
0: जी,
2: कभी तुम बोलते नहीं सुना। तो मुझे उत्तम साहब तो मैं आपको जी नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था तो जी जी जी करके बात करता था या अंकल बोल देता था। कल सफी में आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का। मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की
0: जी जी।
2: क्या उम्र होगी मेरी

0: 58 58 68 24 साल की उम्र
1: जी जी
0: 23 24 के
1: जी।
0: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए
1: जी,
0: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूँ।
2: अरे बाप रे,
0: उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
2: हाँ।
0: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपए रखें गाने का।
2: हाँ।
0: वैसे उस टाइम पे 200 250 300 रुपए में काम कर रहे थे लोग।
2: तो ये 3 गुना मांगा,
0: 750 में आ गए
2: जी।
0: बोले ठीक है,
2: 750 रुपए एक गाने
0: का। गाने का
2: गजब।
0: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
2: वाह।
0: और 35 साल में नौशाद काम किया।
2: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
0: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम हाँ कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहां गई सीखने के लिए।
2: अच्छा।
0: हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
2: जी।
0: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास
2: अबू
0: ले चलिए। मैं ले गया, वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
2: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही हुआ।
0: प्रीति की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब वो अबू और वो प्रीति, अबू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैं कहा बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
2: नाम लेके पुकारते
0: हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
2: जी जी,
0: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
2: हाँ।
0: पता नहीं क्या बात है।
2: अरे
0: हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो। उत्तम जी आ गए बेटा।
2: वाह।
0: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था
2: जी। नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते, अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है उसको।
0: नहीं, पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है
2: जी,
0: माई फ्रेंड का गाना है वो।
2: हाँ हाँ,
0: रफी साहब का गाया हुआ गाना है। मैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
2: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं उसके बाद।
0: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का
1: जी,
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया, हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963-64 की बात होगी
0: जी,
1: जब उनके यहाँ डैडी दो तीन दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे,
1: बिजी रहते थे, और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए बाहर। उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
0: जी जी,
1: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको, हाँ जी आइए बैठी, बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माई फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
0: इज
1: माई फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर वो कहते हैं ना चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन।
0: ओ
1: यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली, वायलिन खोली, वो वही पोल का बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया। तो
0: फेलिक्स की दास्तान आप पहले बता चुके हैं,
1: फेलिक्स हेरडिया साहब ने वो पोल का सिखाया था
0: जी।
1: वो पोल का, वो पोल का कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोल का ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है। तो वो सुनते रहे
0: जी,
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद में उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है, आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है। मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम,
1: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी। तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक जी,
1: सोनिक साहब। हाँ, इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा
0: जी जी जी,
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे,
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं
0: जी
1: जी। रवि साहब क्या, उन्होंने बहुत काम,
0: हाँ
1: रवि साहब क्या बहुत काम किया। तो हम सब बजाते थे साथ में, ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग, तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब
0: जी,
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने, फिर उन्होंने बोला म्यूजिक 1 सुनाओ। म्यूजिक 1 सुनाया तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी में बैठ गए, और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है
1: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। तो गाना था हर तरफ अभी ये फसाने, तो ये गाना था, और मैं बजाते चले गया।
0: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का,
1: हिंदुस्तान की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
0: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
1: उसके
0: है,
1: उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
0: ये किस धुन पे किया था?
1: पता नहीं, आई डोंट नो
0: जी,
1: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
0: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था।
1: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा
0: जी,
1: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
0: हाँ
1: मैं उनका ही गाना दारारी रारी।

0: ही बजा रहा था, बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
1: अपनी तरफ से,
0: अपनी तरफ से बज गया।
1: वाह,
0: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते, व्हाट डिड यू प्लेड? मेरे तो पसीने छूट गए, एसी में मुझे पसीना आ गया। सर, आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्लेड जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी। मैंने, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, अपने सर या आई प्लेड दिस, ये बजाया मैंने।
1: हाँ, वो एक पीस आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
0: लाया तो हूं।

0: जान, ये जो उत्तम बजा रहा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वैलिड होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वैलिड।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से यूरज जी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए,
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ अब

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार। उजाले उनकी यादों की।
1: आकाशवाणी जयपुर, समय वर्तमान अपराह्न 5:00। आरंभ करुछु आजिर सान्ध्य अधिवेशन। कार्यक्रम प्रचारित हेउछि मीडियम वेभ्रि 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जोगे, एफएमरे 103.6 मेगाहर्ट्ज जोगे, मोबाइल फोन रो न्यूज अन एआईआर आप जरिए मध्य आम केन्द्र उपलब्ध। अधिवेशन आरंभरे प्रचार करुछु युवश्रोता बंधु मानक आम कार्यक्रम युववाणी। उपस्थापनारे अछंती अस्मिता षडंगी एवं सोनाली पंडा।

0: भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम एन्टरप्राइजेस इक्वेशन रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी कटक केन्द्रर। आपणमाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी जयपुर केन्द्रर। शुणन्तु आजि बंगाली प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे किछि सूचना। श्रीमद् भागवत प्रचार करिवो संध्या 6:20। केतोटि हिंदी भजन शुणिबे संध्या 6:30। जनजीवन संवाद शुणिबे संध्या 6:55। राति 7:25 जिल्ला हलचल क्रमरे शुणिबे भद्रक जिल्ला संपर्करे। रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। कृषि व कृषक कार्यक्रम प्रचार करिवो राति 7:30। एथिरे चासी भाईंकु दीपद कथारे जैविक पद्धति चाष संपर्क शुणवे एक साक्षात्कार। राति 8:15 शुणवे श्रोता मेसेजर उत्तर को नहीं आम कार्यक्रम संपर्क सेतु। राति 9:30 प्रचार करिबु नाटक मा तुमी फेरियास। मूल रचना विनोद कुमार, ओडिया अनुवाद मनोज कुमार सामंतराय, प्रयोजना मनोज कुमार पूजारी एवं सहयोगिता रंजन कुमार बेहेरा। श्रोतांक अनुरोधे केतोटि ओडिया चलचित्रर गीत शुणिबे राति 10। एथिला आज सांध्य अधिवेशन प्रचार होगा थिबा कार्यक्रम संपर्क रे किछि सूचना। एथर आसंत शुणिबा आसंता कालीर किछि। सकाळ 6:05 शुणिबे भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। शिल्पी माने हेले मोहम्मद सिकंदर आलम, श्यामामणि देवी, बालकृष्ण दास, लोपिता मिश्र, शशांक शेखर महापात्र एवं प्रणति मुन। सकाळ 7:50 वर्ण विभा बर्णाळी शुणिबे कार्यक्रम सुरभि। एथिरे कंठशिल्पी तथा संगीत संयोजक मन्मथ मिश्रंक सहित साक्षात्कार प्रथम भाग शुणिबे। प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइज एक्यूबेशन शुणिबे सकाळ 8:30। केतोटि आधुनिक गीतर कार्यक्रम शुणिबे सकाळ 8:35। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रचार करिबु पूर्वाह्न 10:30। आकाशवाणी लाइव शुणिबे पूर्वाह्न 11। मध्याह्न 12 शुणिबे लाइव फोन इन कार्यक्रम कथा आपणंकर गीत आमर। जंत्र संगीतर कार्यक्रम निर्जरिणी प्रचार करिबो दिन 5:00। एथिरे सितार एवं बेहलारे धुन परिवेषण करिछंती प्रफुल्ल कुमार राउतराय एवं विजय कुमार सामंतराय। दिन 8:20 प्रचार करिबो महिला मानंग पई आम कार्यक्रम घोर घरणी। एथिरे अल्जाइम रोगर कारण और प्रतिकार संपर्क में जगबंधु मिश्रा सहित साक्षात्कार शुणिबे। पर ऋतुस्राव जनित समस्या प्रतिकार संपर्क में शुणिबे दमयंती मुदुली सहित अनेक साक्षात्कार। युवश्रोता आम कार्यक्रम युववाणी प्रचार करिबो अपराह्न 5। एथिरे संपादकीय शुणिबे मातृभाषार सुरक्षा किछि कथा किछि गीतरे रहिछि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंक संपर्क रे। अपराह्न 5:30 शुणिबे चैतेजन कार्यक्रम। एथिरे भेटघाट रे शुणिबे अल्जाइम रोगर संपर्क रे। परे अनेक साक्षात्कार रहिछि बापर संपत्ति लागे झियर अधिकार आछे कि। प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइजेस इक्वेशन शुणिबे संध्या 6। धारावाहिक कार्यक्रम श्रीमद् भागवत प्रचार करिबो संध्या 6:20। राति 9:30 प्रचार करिबो नाटक निर्जन कारावास। मूल रचना जयवर्धन, ओडिया अनुवाद बासंती।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही
1: नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती नीना साहू मुख्य संवाद ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्यरे समन्वय को आहुरी सुदृढ़ करिबाने दुई राज्य मुख्यमंत्री आलोचना श्री जगन्नाथ दर्शन योजनार शुभारंभ कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा स्वतंत्र सघन संशोधन आसंताकाली प्रकाश पाइब चूड़ांत भोटर तालिका एवं कटक बारबाटी स्टेडियम रे ओडिशा टी ट्वेंटी लीग सीएम ट्रॉफी को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री वर्तमान संपूर्ण संवाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को आज भुवनेश्वर स्थित बासभवन में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साक्षात करिछंती। इस संपर्क में मुख्यमंत्री सामाजिक गणमाध्यम उल्लेख करिछंती साक्षात समय ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य समन्वय को आहुरी सुदृढ़ करने संपर्क में आलोचना होई विकास एवं जनकल्याण दिगरे कार्य करने लगे दुई राज्य प्रतिबद्धता दोहराई श्री माझी कहते छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आज दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे सकाळे गणमाध्यम को संबोधन करि श्री साय कहिथिले महानदी जल विवादर समाधान पाई उभय राज्य केन्द्रीय जल आयोग निष्पत्ति को सहमति जणाइछन्ति। केन्द्रीय जल आयोग जो निष्पत्ति नेबे ताहाकु उभय राज्य ग्रहण करिवे महानदी को नेइ कोनोसी प्रकार जल विवाद नाही बोली श्री साय कहिथिले। राज्य विधानसभा सप्तम अधिवेशन आसंता मंगलवार आरंभ हेबो। अधिवेशन समय आठटी सरकारी और गोटे बेसरकारी कार्यदिवस को मिसाई मोट नौटी कार्यदिवस रहिबो। 26 और 27 तारीख सरकारी छुट्टी जोगो गृह कार्य बंद रहिबो। सही भली आसंता मास 2 तारीख में गांधी जयंती पई मध्य गृह कार्य बंद रहिबो बोली जणापड़िछि। विधानसभा अधिवेशन को नहीं पुलिस महानिर्देशक विनय तोष मिश्र आज सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा करी अधिवेशन 30 प्लाटून पुलिस फोर्स सह त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा आसंता मास 3 तारीख पर्यंत अधिवेशन चलिबो बोली विधानसभा सचिवालय पक्षरु सूचना मिली। राज्य में चलित आर्थिक वर्ष पाई श्री जगन्नाथ दर्शन योजनार आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा भुवनेश्वर लोकसेवा भवन आभासी जरिया शुभारंभ कर श्रीमती परिडा कहते
2: प्रथम पर्याय आम 20 सेप्टेम्बर 17 अक्टोबर मध्य करिबो 13 जिल्लार मोट 10,535 तीर्थयात्री दर्शन व्यवस्था कर प्रति बस रे 3 जन एक्सकर्ट अधिकारी अछंती पारामेडिकल स्टाफ जाउचंती एवं प्रत्येक यात्रींकर बस को आसीबा पूर्वरु तांकर स्वास्थ्यर परीक्षण सरीछि।
1: प्रथम पर्याय में मालकानगिरी कोरापुट और नवरंगपुर जिल्लार 910 जन श्रद्धा पूरी गस्त करिवे। आसंता मास 17 तारीख सुधा 13 जिल्लार 10,535 जन श्रद्धालु एही योजनारे श्रीजगन्नाथ दर्शन करिवे। योजनारे आर्थिक अनग्रसर श्रेणीर श्रद्धालुमानंकु पुरी श्रीजगन्नाथ मंदिर को यात्रा दर्शन और मागणा महाप्रसाद मिलिबार सुविधा करा जायछि। विशेषकर 60-75 वयसर वृद्ध और 75 वर्ष पर्यंत विधवांकु एही योजनारे सामिल करा जायछि। गंजाम जिले में विकास विभिन्न विभाग मध्य समन्वय और प्राथमिकता भित्तिक उन्नयन कार्यक्रम नहीं नवगठित जिला योजना कमिटी प्रथम बैठक अनुष्ठित होई विधायक पूर्णचंद्र सेठी बैठक में जोगदे 11 विभाग विभिन्न योजना प्रकल्प अग्रगति और आगामी विकास योजना संपर्क में आलोचना करते जिलापाल भी कीर्तिभासन जोगदे प्रगति पथे गंजाम लक्ष्य जिलार विकास समस्त सहयोग कामना कर आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। राज्य में चलिथिबा स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर 2026 प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची आसंताकाली एसआईआर संपर्कित चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइब। एही क्रमरे अपराह्नरे राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन गणमाध्यम को भुवनेश्वरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सूचना प्रदान करिवे। भोटर तालिकार संशोधन को नहीं घर को घर बुली जांच प्रक्रिया मे मास 30 तारीख जून मास 28 तारीख मध्य पर जुलाई मास 5 तारीख में चिट्ठा तालिका प्रकाश पाई अगस्त मास 19 तारीख पर्यंत भोटर मान दावी आपत्ति दाखल सुजोग दी प्रक्रिय भोटर तथ्यर जांच संशोधन और दावी आपत्तिर समाधान कर

0: 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ହାସଲ ଦିଗରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସହ ଅଧିକ ସମର୍ପଣ ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
1: जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने 25 साल तक राज्य के मुखिया और देश के मुखिया के रूप में सेवा देने का रिकॉर्ड नहीं बनाया। मोदी जी एक मेव नेता है, इन्होंने 25 साल तक हर चुनाव में विजय प्राप्त कर जनता के आशीर्वाद प्राप्त कर ये काम किया है। ये देश के सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी दलों ने तय किया है कि इस अवसर को देश भर की जनता के साथ ले जाएंगे। हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: यही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते सेवा संकल्प अभियान केवल एक कार्यक्रम नुहे बरंग मानव सेवा और त्यागर एक विराट जन आंदोलन। प्रधानमंत्री नेतृत्व में देश आज विश्वर एक प्रभावशाली भू राजनैतिक और अर्थनैतिक शक्ति भाव उभा होई। युवपीढ़ी को दैनन्दिन जीवन किसी समय बाहर कर समाज सेवे नियोजित देश सेवा व्रती हेबाक आह्वान देते मुख्यमंत्री।
2: मोदी जी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व आज समग्र देश में नवजागरण नूतन अध्याय रचना करीसावासी प्रति गभीर स्नेह एवं राज्यर भित्तिमि विकास असीम सहयोग निमंत आम सदा कृतज्ञ। सेवा संकल्प पर्व पालन करष्ठावर जनसेवा गरीब कल्याण और समाज शेष धाड़ी प्रत्येक व्यक्ति मुहरे हस फुटाई एक समृद्ध सशक्त और विकसित ओडिशा गठन पाई आमे पुनर संकल्पबद्ध।
0: केन्द्रमंत्री किरेन रिजिजू एही अवसर रे कहिथिले
3: 12 साल पहले हम कहाँ थे, हमको कोई नहीं पूछते थे। आधे से ज्यादा गरीबी के रेखा के नीचे में, आधा से ज्यादा आबादी, बिजली पानी नहीं मिलते थे। आज परिस्थिति बदल गई है। आज देश कोने कोने तक लाभार्थी मोदी जी का बनाया हुआ स्कीम लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह कहते
4: इत्तेफाक से कुछ ही दिन के बाद उनके 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं लगातार एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, और गत 12-13 वर्ष जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा है, हालांकि हम स्वयं को वो प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन जिस समर्पण भाव के साथ दिन रात प्रयास करके परिश्रम करके उन्होंने अपने हमारे सबके जीवन में, आपके हमारे जीवन में सरलता सुविधा लाने का काम किया है, उसके प्रति हमारा धन्यवाद भी, शुभकामनाएं भी, आशीर्वाद भी।
0: सेवा संकल्प अभियान अवसर में भुवनेश्वर यूनिट 3 स्थित इडको प्रदर्शनी पड़िया रे मेगा रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित होता बेले 8810 यूनिट रक्त संग्रह कर विश्व रेकर्ड सृष्टि कर भुवनेश्वर ठारे सेवारे मोर योगदान कार्यक्रम में सामिल हो चारारोपण करथिले मुख्यमंत्री।
5: जशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी होउछंती आधुनिक भारत बिंधाणी। दीर्घ 50 वर्ष अधिक समय धरी से देशवासी सेवा कर चालिछंती। सेथिरु गुजरात मुख्यमंत्री और देशर प्रधानमंत्री भाव 25 वर्ष सेवा संकल्प ये सारा भारत वर्ष कायाकल्प विस्तार कर संपूर्ण जीवन केवल देश सेवा समर्पित है। सेवा संकल्प अभियान माध्यम रे ये एक मास व्यापी एक कार्यक्रम सारा भारत वर्ष रे आम ओडिशा प्रदेश रे कार्यकारी करा जाउछ। ये सेवा संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी रो तरफ रु, भारतीय जनता युवा मोर्चा तरफ रु एवं राज्य सरकारंकर तरफ रु, राज्य सरकारंकर स्वास्थ्य विभाग तरफ रु, राज्य स्तरीय मेगा स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर ये कार्यक्रम केवल गोटे सरकारी कार्यक्रम नुहे बर यह मानव सेवा त्याग एवं सामूहिक उच्चीकृत भावनार एक विराट जन आंदोलन। प्रधानमंत्री मोदी जी सब निष्ठापर सहित जनसेवा गरीब कल्याण समाज समाज शेषा प्रत्येक व्यक्ति मुहरे हस फुटाई आमको प्रेरणा दे आसो मानव सेवा ही माधव सेवा यही मंत्र अनुप्राणित कर एक दक्ष प्रभावशाली एवं सुदृढ़ रक्त संचारण सेवा बिना कौन से भी आधुनिक चिकित्सा संपूर्ण हो पारिबो नाही। रक्तर आवश्यकता थिवा प्रत्येकंकर पाई पर्याप्त परिमाण

0: আকাশবাণী কটক পরবর্তী কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করুছো আকাশবাণী দিল্লির কিছুক্ষণ মধ্যে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है

0: कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही

0: नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
2: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
3: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
4: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
3: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
5: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम

0: सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
2: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and

0: global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के

0: କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଏଥିରେ ନାଦସ୍ୱର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ ଶେଖ୍ ଚିନ୍ନା ମୌଲାନା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में

0: एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
1: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और में हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की

0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आईआईसीए ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Garjan 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." A Naxal commander carrying a bounty of 30 lakh rupees has been killed in an encounter with the Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Brijesh Ganju, alias Gopal Singh Bhokta, was the chief of Jharkhand's banned extremist outfit, the Tritiya Prastuti Committee. A highly wanted fugitive, Ganju had been absconding for nearly 2 decades and was facing more than 50 criminal cases, including murder, kidnapping, extortion and targeted attacks on security forces. The Electoral Registration Officer of Delhi Cant Assembly Constituency has clarified the details, facts and documents furnished by Election Commissioner of India Dr. Sukhbir Singh Sandhu has already been duly verified. The Electoral Registration Officer said the electoral entry of Dr. Sandhu has been validated and retained for inclusion in the final electoral

0: Roll of Assembly Constituency 38, Delhi Cant, which is scheduled for publication on 4th November. Indian Institute of Corporate Affairs, IICA, organized an insightful session today in Insolvency and Bankruptcy Code as an evolving law through the amendments in Manesar, Gurugram. The Ministry of Corporate Affairs said that the session rendered valuable insights over the dynamic nature of insolvency law, relationship between legislation, subordinate legislation and market developments. The Ministry informed that this session was attended by former chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, Dr. M.S. Sahu, and DG and CEO IICA, Gyaneshwar Kumar Singh, among other key dignitaries. India made a strong start at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, winning two silver medals in shooting on the opening day today. Trio of Ilavanil Velarivan, Vidarsa Vinod and Sonam Maskar won silver in the women's 10-meter air rifle team event, while Ilavanil added another silver in the individual event. The President and Prime Minister have congratulated the athletes on the feat. Suchika Tarial created history, becoming the country's first athlete to inch ashore an Asian Games medal in mixed martial arts after reaching the women's traditional 60 kg semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी जयपुर समय वर्तमान 11:10 सुनंतु आसंतकाली प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क करि किछि सूचना सकाळ 6:05 रे सुनिबे भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना शिल्पी माने हेले मोहम्मद सिकंदर आलम श्यामामणि देवी बालकृष्ण दास लोपिता मिश्र शशांक शेखर महापात्र एवं प्रणति मुन सकाळ 7:25 वर्ण विभा वर्णाळीरे शुणिबे कार्यक्रम सुरभि एथिरे कंठशिल्पी तथा संगीत संयोजक मनमथ मिश्रंक सहित साक्षात्कार शुणिबे प्रथम भाग प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइजेस इनक्यूबेशन शुणिबे सकाळ 8:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रचार करिबो पूर्वाह्न 10:30 आकाशवाणी लाइव शुणिबे पूर्वाह्न 11:00 मध्याह्न 12:00 शुणिबे लाइव फोन इन कार्यक्रम कथा आपणकर गीत आमर जंत्र संगीतर कार्यक्रम निर्जरिणी प्रचार करिबो दिन 5:00 एथिरे सितार एवं बेहेलारे धुन परिवेषण करिसंती प्रफुल्ल कुमार राउतराय एवं विजय कुमार सामंतराय दिन 5:20 प्रचार करिबो महिला मानक पई आम कार्यक्रम घर घरणी एथिरे अल्जाइम रोगर कारण और प्रतिकार संपर्क में जगबंधु मिश्रंक सहित साक्षात्कार शुणिबे परे ऋतुस्राव जनित समस्या प्रतिकार संपर्क में शुणिबे दमयंती मुदुली सहित अन्य एक साक्षात्कार युवश्रोतमानंक पई आम कार्यक्रम युववाणी प्रचार करिबो अपराह्न 5:00 एथिरे संपादकीय शुणिबे मातृभाषार सुरक्षा किछि कथा किछि गीतरे रहिछि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंक संपर्क में अपराह 5:30 शुणिबे चैतीजन कार्यक्रम एथिरे भेटघाटे शुणिबे अल्जाइम रोगर संपर्क राति 9:30 प्रचार करिबो नाटक निर्जन कारावास मूल रचना जयवर्धन ओडिया अनुवाद वासंती श्री प्रयोजना नरेन्द्रनाथ पटनायक एवं रंजन कुमार बेहेरा ଶୁଣିଲେ ଆଗାମୀକାଲି ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 11:12 ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିକାର ରାତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ